0: झीले यहाँ सुंदर FM अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति।

0: सुर समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति
1: सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
2: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहेका छौं। त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्ना सफल भएका छौं।
1: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखाना में निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँ चाहे बमोजिम का चांदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
2: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सबै सामान।
3: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाड़ी र जावला खेल। फोन 42 23 745 र 42 33 556।
4: सुट त चिटिक्क छ नि, यही सिलाउनु भयो कि बाहिरको?
5: काठमाडौँमा राम्रो सिलाइको लागि प्रसिद्ध श्रेष्ठ टेलरिङमा नि
6: श्रेष्ठ टेलरिङ बाग बजार र चाबहिल।

0: ओल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
2: अनि मलाई

0: पाए।
1: नेपाल टेलिकम को सहुलियत दर का पैकेज खरीद करना #1415# डायल गर्नुहोस्।
2: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार।

0: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
1: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
0: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।
1: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।
1: One oh four eight.

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते, हंसते खेलते मुस्कुराते, नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है, और फिर यूं हुआ।

दिल और धड़कन दूर हो गए, मजबूर हो गए कि जिंदगी आजमाती है, हंस के रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए। दिल और धड़कन मिले तो, पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और अब ये हाल है

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: भज बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल,
1: भज बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल,
0: तेरी माधुरी मूरत पे वारु गोपाल,
1: भज
0: बाल कृष्ण नंदलाल गोविंद गोपाल।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

जगन के प्राण आधारे, किस हेतु फिर लखन सिंहासन श्री राम वनवास सिधारे।

शिक्षक है तू सहज हमारा रक्षक है तू परम पिता तू माता है ये जन्म जन्म का नाता है तेरी तेजस्वी है सूरज तू दया क्षमा की मूरत है माथे पे चंद्र विराजत है तू सबके कान संवारक है तू घट पुरुष उपदेशक है तू सृष्टि का निर्देशक है घट घट में

जो तेरी शरण में आता है, पर सागर से तर जाता है। हे शिव तू सर्वाधारी है, तेरी महिमा सबसे जारी है। तू सर्व कला का ज्ञाता है, तू जनमानस का दाता।

0: स्वामी के चरणों में वंदना।
1: देवी अदिति, आप अमृत तीर्थ से आ गई?
0: हाँ स्वामी, साधना सिद्ध हुई, कामना पूर्ण हो गई।
1: स्पष्ट कहो देवी, क्या कह रहे हो तुम? हम कुछ समझ नहीं पाए।
0: स्वामी, मैं इतने दिनों से आपके चरणों की सेवा कर रही हूँ, आप अभी तक मुझे नहीं समझ पाए?
1: निस्संदेह तुम सबसे अधिक मेरे समीप हो, किंतु देवी अदिति, परमपिता ब्रह्मदेव ने अपनी सृष्टि में एक सबसे रहस्यपूर्ण रचना की है, वो है नारी। मैं 13 पत्नियों का पति हूं, परंतु आज तक किसी का रहस्य नहीं जान पाया।
0: मेरे मुखमंडल की ओर ध्यान से देखिए स्वामी, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। बताइए स्वामी, क्या देखा आपने?
1: एक नई आभा।
0: हाँ स्वामी, भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे अपने अवतार की माता और आपको पिता होने का वरदान दिया है।
1: हे प्रभु, हे कृपा निधान कमलापति, हमारे सन्यास जीवन की आपने साथ पूर्ण कर दी।
0: भगवान स्वयं मेरी कोख से अवतार लेकर इंद्र तथा देवताओं का उद्धार करेंगे।
1: हमारे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा अदिति, और कौन होगा? कितने करुणामय है आप, कितने दयालु है आप,

0: नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु।
1: कैलाश का वातावरण देवर्षि के आगमन से खेल उठा।
0: जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वगामी हैं, परमेश्वर हैं, जगत की हर नई घटना के साक्षी हैं आप। मैं आपका तुच्छ सेवक, भला मैं आपको क्या बताऊं।
1: मुनिवर नारद, क्या इस समय किसी नई घटना के साक्षी बनकर आए हैं आप?
0: हाँ प्रभु, मैं आश्चर्यचकित हूं एक घटना से। उसी के विषय में मेरे मन में नए नए प्रश्न उठ रहे हैं।
1: अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए आए हैं मुनिवर?
0: और कहां जाऊं प्रभु, यही तो वो पावन तीर्थ है जहां मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। मन को परम शांति मिलती है। ये बताइए प्रभु, भगवान विष्णु ने देवी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके उदर से जन्म लेने का वरदान क्यों दिया? आज तक जितने भी अवतार भगवान विष्णु ने धारण किए,
1: उनके लिए उन्होंने किसी को अपनी माता का पद नहीं दिया। वे पहली बार अदिति के पुत्र, इंद्र के भ्राता और देव बंधु बनकर प्रकट हो रहे हैं। क्या यही बात आपको चकित कर रही है मुनिवर?
0: हाँ प्रभु, आपकी इस लीला का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया।
1: आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं मुनिवर नारद। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रत्येक कार्य एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप ही होता है। मैंने स्वयं देवताओं की रक्षा का दायित्व भगवान विष्णु को सौंपा है। अदिति के गर्भ से देव बंधु के रूप में अवतार लेने का भगवान विष्णु का एकमात्र उद्देश्य यही है।
0: धन्य हो प्रभु,

मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। आपकी इस लीला का रहस्य तीनों लोकों में भला कौन जान सकता है? मन में उठी सारी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। अब मैं देवी अदिति के पुत्र के रूप में भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा करूंगा। जय शिव शंकर।

0: प्रणाम परम पिता।
1: आओ नारद, तीनों लोक में भ्रमण करके आए हो, कहो क्या समाचार लाए हो?
0: परम पिता ब्रह्मदेव, कोई भी समाचार यहाँ आने से पूर्व आप तक पहुंच जाता है। मैं तो आपके दर्शनों की अभिलाषा लिए आया हूं।
1: तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन तुम्हारे मन में उठे किसी नए प्रश्न का सूचक होता है नारद?
0: सो तो है ही परमपिता। संसार के जिज्ञासुजनों का ज्ञान बढ़ाने के लिए नित नए नए प्रश्न करना मेरा धर्म है।
1: प्रश्न क्या है वत्स?
0: परमपिता, भगवान विष्णु ने अदिति को मातृत्व का वरदान दिया है। वे शीघ्र ही देवराज इंद्र के अनुज बनकर अवतार लेने वाले हैं। अब प्रश्न यह है कि वो दैत्यराज बलि के इस यज्ञ को कैसे रोकेंगे?
1: कदापि नहीं, भगवान विष्णु ऐसा कदापि नहीं करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस यज्ञ को पूर्ण कराने में अपना सारा ज्ञान सारी शक्ति लगा दी है। यज्ञ पूर्ण होने को है, यज्ञ रोकना इस अवतार का उद्देश्य भी नहीं होगा नारद।
0: फिर भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य क्या है परमपिता? यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्यराज बलि सर्वशक्तिमान होकर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे।
1: भगवान शिव के संकेत पर ही यह विष्णु लीला हो रही है नारद। इस रहस्य को भगवान शिव शंकर ही जानते हैं।
0: परमपिता, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, भला यह कैसे संभव है कि आप इस रहस्य की रचना को नहीं जानते? हाँ, यदि आप बताना ना चाहें तो ना बताइए, परंतु ये ना कहिए कि आप इस रहस्य को नहीं जानते।
1: मेरी बात को अन्यथा न समझो नारद। भगवत शक्ति के हर रहस्य का उद्घाटन करना किसी के हित में नहीं है। बस इतना ही समझ लो कि अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं। धैर्यपूर्वक उनकी लीला की प्रतीक्षा करो और उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लो।
0: नारायण।

0: श्री विष्णु स्वरूप भगवान वामन देव की जय हो।
1: श्यामला अखिल भूखंड स्वामिनी विष्णु प्रिया देवी वसुंधरा पधारिए।
0: प्रणाम विधाता, प्रणाम देव गुरु,
2: प्रणाम भुवन स्वामिनी। देवी पृथ्वी, कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है।
0: भगवान वामन देव, आपके आसन के लिए मैं ये मृगजन्म आपकी सेवा में भेंट कर रही हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए।
3: भगवान विष्णु की जय हो।

0: पूछू।
1: 16 कलाओं से युक्त अपनी चंद्रकला द्वारा इस सारे जगत को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रदेव, इस आश्रम में आपका स्वागत है।
0: सृष्टि रचयिता भाग्य विधाता ब्रह्मदेव, हम भी भगवान वामन देव की सेवा में ये तुच्छ भेंट लाए हैं। प्रभु, विपत्ति के समय आगे रहने वाला तथा दुष्ट आसुरी शक्तियों को दंड देने वाला ये चंद्रदंड आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए प्रभु।

0: भगवान वामनदेव की जय हो, श्रेष्ठ जनों की जय हो, देवी अदिति की जय हो, वामन रूपी भगवान विष्णु की जय हो।
1: पधारिए भुवन भास्कर, निद्रा निमग्न प्राणियों को नित्य नई चेतना प्रदान करने वाले सूर्य देव, आपका स्वागत है।
2: आप भी वामन ब्रह्मचारी को कुछ उपहार देने आए हैं?
0: हाँ, ऐसे शुभ अवसर पर भला मैं पीछे क्यों रहूं? ब्राह्मण रूप भगवान विष्णु की सेवा में मैं ये छत्र अर्पण कर रहा हूँ। ये सदा वर्षा और धूप से रक्षा करते हुए शीतल छाया प्रदान करेगा। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु।

0: सभी ने प्रभु वामन देव को कुछ न कुछ उपहार दिया। हम पितामह होकर कुछ न दें तो बड़ी जगह साई होगी।
1: हाँ परमपिता, आप भी कुछ न कुछ उपहार दीजिए।
0: अवश्य, मैं वामन भगवान को यह कमंडल प्रदान करता हूं। सदैव गंगा जल जैसे पवित्र जल से परिपूर्ण यह अक्षय जल का भंडार है, इसे ग्रहण कीजिए प्रभु।

0: ब्रह्मचारी के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से आप सबने हमें परिपूर्ण कर दिया है। हम आपके आभारी हैं।
1: भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय।

0: प्रणाम बाल ब्रह्मचारी, आपने यहाँ आने की कैसे कृपा की?
1: हमने दानवीर असुरराज बलि की बड़ी प्रशंसा सुनी है, उन्हीं के दर्शन करने आए हैं।
0: आप उनके दर्शन करके क्या करेंगे महाराज?
1: पुण्य आत्माओं के दर्शन से पाप कटते हैं, वे तो दानवीर धर्मात्मा हैं, उनसे हम भी कुछ दान मांग लेंगे।
0: क्या दान मांगेंगे? उनकी ओर से तो हम भी आपको सब कुछ दे सकते हैं। महाराज इस समय अश्वमेध यज्ञ में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए स्वयं नहीं आ सकते। आप योग्य दान लेकर यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रतिहारी, बटुक महाराज को योग्य भिक्षा दे दो।

प्रतिहारी, ये भिक्षा बाल ब्रह्मचारी को उचित प्रतीत नहीं हुई, कोई और दान ले आओ।

0: आश्चर्य है, यह भी नहीं।
1: इस बाल ब्रह्मचारी को संतुष्ट करना बहुत कठिन है सैनिक।

0: बहुमूल्य आभूषणों से बढ़कर और कोई क्या देगा। इससे इनकी मन की तृष्णा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ ले जाओ,
1: इसे स्वीकार कीजिए महाराज।

0: अन्न, वस्त्र, आभूषण सबके सब आपको समर्पित किए गए। बताइए ना महाराज, आपको क्या चाहिए?
1: नहीं भाई, हम आपसे कोई दान स्वीकार नहीं करेंगे। पहले आप अपने बलि महाराज को बुलाइए, हमें जो कुछ मांगना है हम उन्हीं से ही मांग लेंगे।
0: ब्राह्मण देवता, हठ न कीजिए। यज्ञ आहुति पूर्ण किए बिना महाराज बलि यहां नहीं आ सकते।
1: ये ब्राह्मण तब तक यहां खड़ा रहेगा जब तक बलि महाराज यहां स्वयं नहीं आते।
0: याचक भिक्षा लिए बिना द्वार पर खड़ा रहे तो यज्ञ में विघ्न आ सकता है। आपसे निवेदन है, आप भिक्षा लेकर यहां से पधारें।
1: यदि आपकी यही इच्छा है तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है।
2: ये ब्राह्मण देवता रुकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी आपका संदेश महाराज बलि तक पहुंचा देता हूं।

0: पशुपति महाराज बलि की जय।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: याचक प्रवेश द्वार पर खड़ा है, वो हमारे हाथों से भिक्षा नहीं ले रहा है।
1: याचक क्या चाहता है उसे समझाओ, हम यज्ञ वेदी छोड़कर नहीं आ सकते। मेरी ओर से प्रार्थना करो, कहो कि दान स्वीकार कर ले।
0: अन्नदाता, वो आपके हाथों दान स्वीकार करना चाहता है, बड़ा हठी प्रतीत होता है।
2: कौन है वो?
0: एक ब्राह्मण बालक।
1: बालक? बालक है तो फिर हठ उसके लिए स्वाभाविक है। गुरुदेव क्षमा करें, मैं उसे दान देकर आता हूं।
2: राजन, आज की संकल्प की हुई आहुतियां शेष है, शीघ्र ही लौट कर आइए।
1: जो आज्ञा गुरुदेव।

0: आपका कल्याण हो दैत्य राजबली। मैं बटुक ब्राह्मण आपके सौवे यज्ञ की सफलता की कामना करता हूं।
1: आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या आपके रूप में साकार होकर हमारी इस यज्ञ भूमि को पावन करने आई है। हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्राह्मण कुमार?
0: दैत्यराज, आपने हमारे प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है, आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपके कुल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जैसे महापुरुष प्रकट हुए। आपके पूज्य पिता महान ब्राह्मण भक्त थे। जब उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मण वेश बनाकर उनसे वरदान मांगा, तब देवताओं के छल को जानते हुए भी अपनी आयु उन्हें दे दी। आपका वंश सचमुच महान है।
1: ब्राह्मण कुमार, आप अपनी आयु से अधिक अनुभवी प्रतीत हो रहे हैं। आप मेरे पिता, दादा, परदादा के चरित्रों से भी परिचित हैं। आप स्वयं एक रहस्य हैं। आप चाहे जो भी हो, आपकी इच्छाओं को तृप्त करना मेरा परम कर्तव्य है। कहिए, आप किस दान से संतुष्ट होंगे?
0: हमें आपका दर्शन पाने से ही सब कुछ प्राप्त हो गया राजन।
1: नहीं ब्रह्मचारी, यदि आप बलि के द्वार से दान लिए बिना ही लौट गए तो बलि महापाप का भागी बनेगा। आपने हमारे सेनापति के हाथों से दान स्वीकार नहीं किया। अब हमसे आप इच्छित दान मांगिए और उसे स्वीकार कीजिए। मांगिए मांगिए जो मांगना है।
0: दैत्यराज, हमें यज्ञ भूमि के लिए 3 डग धरती चाहिए।
1: क्या? 3 डग धरती?
2: तीन डग धरती?
1: आपने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 डग धरती? ब्रह्मचारी, ऐसा तुच्छ दान मांगकर आपने हमारा उपहास किया है। आप बातें बूढ़ों जैसी करते हैं। मांगते समय बुद्धि बालकों से प्रयोग की? अरे मांगना ही था तो गौधन मांगा होता, माणिक हीरे मोती स्वर्ण भंडार मांगा होता। हर प्रकार से संपन्न नगर ग्राम अन्न भंडार मांगा होता। हम अपने बाहुबल से विजित द्वीप प्रायद्वीप

0: पैरों से 3 डग धरती पाकर क्या संतुष्ट हो जाएंगे?
1: जो 3 डग धरती पाकर संतुष्ट नहीं होगा वो त्रैलोक्य पाकर भी संतुष्ट नहीं होगा। राजन, आपके अधीन धरती पाताल होते हुए भी स्वर्ग पर अधिकार पाने की इच्छा क्यों है? राजन, पाने के पश्चात आवश्यकताएं समाप्त हो सकती हैं, परंतु पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। निरंतर बढ़ती हुई इच्छाओं की अंतिम सीमा है पतन। पतन से बचने का एकमात्र उपाय है संतोष।
0: संतोष?
1: हम केवल 3 डग धरती से संतोष कर लेंगे। आप हमें 3 डग धरती देने का संकल्प कीजिए।
2: यज्ञ का समय पूर्ण होने को आया, परंतु राजन अभी तक नहीं आए।
1: राजन, संकल्प कीजिए।
0: मैं परम पूज्य पितामह प्रहलाद और पूज्य पिता श्री विरोचन कवंशधर बलि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को 3 डग धरती देने का संकल्प लेता हूं।